संशय महाभूत दसई सृष्टि का पहले मई थिए भगत कोई थिए नन्नरु जो देख्छौ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टिका पछि फेर महाप्रलयमा मै एक रहन्छु भगत मुदी

कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा कसो धन सम्पत्ति के लानु छैन छोडेर

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून से साथ श्रृंखली शिवसार सुदामा की नारी कर चली भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई बिन्नति कर चीखे पिदर ले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहीं ज्योति समान देवी के ही सौगर मन देव चंगा कर मिलन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुझे तंबू जमा कर दी सही तंबू बली गए प्रवेश पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जनो बाला का ओ जननो बालका ओ जगमग करने मन चित हरने जननो बालका नारायण हो किनवाने देखी झेलमा चाहिँ यो झेल परेका बाबु बसिदेव देवकी दुवै झेलमा छरसरी जन्मे सके फेरि कंसले मार्छ भन्ने उता पिर भएकाले नारायण बैराको चलो नागो

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Mania, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायी किसान राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पत्रकार शिक्षक विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
2: शान्ति पाखिन, नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य।
3: हार्दिक मंगलमय शुभकामना। विजय दशमी दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसरमा श्री सरस्वती इंग्लिश स्कूल सिंगटी सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा देश विदेशमा रहनुभएका शुभचिन्तकहरूमा सुख समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। राजु शर्मा प्रिन्सिपल।

0: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
0: श्याम बस्नेत, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य। हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, आम मतदाताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
2: श्याम प्रसाद खतिवडा, सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ, बागमती प्रदेश समिति। हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 पावन अवसरमा हाम्रा सेवाग्राही, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नगर एवं गाउँवासी साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिसँगै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: रोना प्रताप चेसी अध्यक्ष, सृजना सुवेदी उपाध्यक्ष, तामाकोशी गाउँपालिका परिवार, दुलखा।
3: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ, सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलौं सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन 2026 अक्टोबर 15 तारीख आश्विन 29 गते बिहीबार पञ्चमी तिथि अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पयारी।

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नै परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।

मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म चानन निलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिरक्षे बलिदक्षे।

यो ची सब ठीक पारी मन ले अयोध्यातिर देखे श्री अमरावती सारी पूरी आनंद बो हर हर सारा लश्कर लिप से नगर मा चलते बड़ा सोरली